निलिप हा तो कोई ने नहा लुक में बखानी वो ने वी अन्य सिवेला हुए चा ने में लोग का बदल गया दो पेंबा aiwa wo sivela ni chipon la ho a ah, o ke sivela ah. De wi enani wa pa wi na la pamte ko sa